0: ती फिर आवेज ना
1: बिल्कुल
0: सेंसर में आ गए थे
1: तो वही से तो
0: बाबू 44 रीजन ऑल सेंट्रल
1: वही से तो